हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति।

सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। त्यागानुसारिणी कीर्ति। अभ्यासानुसरणी विद्या।